गुरुअर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, चरण छलो मार्ग गोविंद। ये केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। वो मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर की उस्तुति करनी, उदे गुण गाने, ये मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ये रसना पवित्र हो जाती है जो नाम का अमृत पीती है, जपती है श्री वाहेगुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर लै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया है, उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सके हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़ियां जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जाणगे। आओ सारे प्यार दे नाल जप

गुरु अर्जन देव पातशाह फैसला देंदे हन कि जेड़ा ऐसा कर्म करेगा सेवा सिमरन परपकारी जीवन बनावेगा उदा मुख एथे भी उजला है ते दरगाह विच भी उजला है। कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा जित मुख सदा सलाहिए पागा रत्ती चार नानक ते मुख उजले सच्चे ते दरबार। ओ सच्चे दरबार विच भी मुख उजला ते संसार विच भी मुख उजला हो जांदा जो उसका नाम जपदे हन जो ईश्वर नू त्यामना करदे हन। कर हर कर्म हजूर दा बचन है सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान अठसठ तीरथ सगल पुन जी दया परवान जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान। इसलिए गुरसिख दा जीवन सेवा सिमरन परपकारी जीवन होवे ते फिर एथे भी मुख उजला ते दरगाह विच भी उजला है।

नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ध्याया, जिन्हां ने नाम नू ध्यावना कीता, जिन्हां ने नाम दी गालना घालियां ए मुशक्कत कीती है, फिर वो आप ही नहीं तरे, अनेकां जीव होर भी उना दे चरना नाल लग के तर गए। गुरमुख कोट उधारदा गुरमुख कोट उधारदा दे नामे एक कण, जिन्हां ने नाम दी घालना घाली नाम दी कमाई कीती ओ फिर अनेकां नू होरना नू भी नाल ही तार के गए हन। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन चरण चलो मार्ग गोविंद, इस मार्ग ते चल के अपने जीवन नू असी सफल करना है। गुरसिख दा जीवन अमृत वेले उठना, इशनान करना ते फिर सतसंगत विच बह के मालक दी सिफत सलाह करनी, ए गुरसिखी है, ए जीवन है सिख दा। इस मार्ग नू हजूर दस रहे हन।

तू मेरे कम लग जा मैं तेरे कम लग जाना। मैनू तू अपना कम दे दे ते मेरा कम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता है एक दूसरे दे काम आना जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे। जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा जेड़ा कर सकदा है उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वो मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मूंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास तो हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना हो आदर करना हो भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ अरदास अर्ज दास बेनती कर रहा हूं अर्ज कर रहा हुआ मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ। एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे अपनी भगती नाल मेरे लिए भी एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया वाहिगुरु का कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तां करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा है घबराया हुंदा है डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है पसीने पूंजदा है सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कारज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कारज विच शोभा हुंदी माण हुंदा है सत्कार हुंदा उस कारज दी वड्डी वड्याई हुंदी
कारज आया रासे नानक कहो गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदों सतगुरु कारज करना आ जावे उसले कारजां च सोभा आउंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ

अरदास ही करनी है ते किसी छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई त्याईए जीअड़े सिर शाह पातशाह, जो सब तो पातशाह तो शहनशाह तो वड्डा है। शाह दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक ओदा आसरा तक। मेरे हिरदे मेरे जी मेरे मन, सोई त्याईए जीअड़े सिर शाह पातशाह, तिस ही की कर आस मन। जिसका सब सुविसाह, जिदा सारिया नू विश्वास है, जिदे ते विश्वास कीता जा सकता है, विसाह कीता जा सकता है। जिदी समर्था थोड़ी होवे, शक्ति थोड़ी होवे, ओदे ते काम छड़ के कई बारी विश्वसा बनिया रहेगा, डर बनिया रहेगा, तौखला बनिया रहेगा। वाहिगुरु ते भरोसा करने वाले नू विश्वास बजदा है, विश्वसा नहीं रहिंदा, खतरा ते तौखला नहीं रहिंदा। दृढ़ विश्वास वाले बंदे जिसले उत्ते भरोसा करते ने, फिर इस तरह करते ने कि सब सियाणपा छड़ के गुर की चरणी पाह, फिर अपनी सियाणप की गल नहीं करते। मन मेरे सुख सहज सेती जप नाम, सुख तेनू देवेगा, सहज तेरा बनिया रहेगा। तू केवल ओदे नाम विच जुट जा, ओदी भगती च जुट जा। आठ पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोबिंद नित गाओ, तू ओदे गुण गाउणा शुरू कर। तू अठे पैर ओदे ध्यान च रहना शुरू कर, ओ तेनू अपने ध्यान च रखेगा। फिर तिसकी शरणी परमना जिस जेवड अवर ना कोए, किसे छोटे मोटे दी शरण पैन दी की लोड़ है। तू ओदी शरण पाओ जिदे जिड्डा होर कोई नहीं है, जिदे वर्गी समर्था किसे होर कोल नहीं है। जिस सिमरत सुख होए घणा, जिनू याद करन नाल बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति हो, वाधू सुख की प्राप्ति हो। दुख दर्द ना मूले होए, सदा सदा कर चाकरी, तू ओदी सेवा च लग। प्रभ साहिब सच्चा सोए जो सच्चा मालिक है। साध संगत होए निर्मला, सतसंगियां नाल रल के पवित्र होके निर्मल होके, मलीन बुद्धि नू छड़ के दुरमत नू छड़ के गुरमत दा धारनी बन के। कटिए जम की फास, सुख दाता भय भजनो, तिस आगे कर अरदास। फिर तेरी अरदास करन दी ढिल है, ते ओदी रहमत करन च कोई ढिल नहीं। किसने ओ रहमत करेगा, मेहर करे जिस मेहरवान, ता कार्ज आवे रास, जीवन दे सारे कार्ज सौर दे।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेडे बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

गुणवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। ते परमात्मा आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

दो मित्रां नूं आपस विच काम पे आ। एक मित्र ने किया, लै मित्रा मेरा काम करना ही, कहन लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया, भुल गया ना कीता। एक दिन मुलाकात होई।

विश्वास काती अकृत कण में कोई ना रखन। विश्वास काती अकृत कण, विश्वास काती किसनु कहंदे ने, जेड़ा किसे नु प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे।

पता जेड़े लोग लक्ष्मी का चित्र बना के पूजा करते रहे वो जो लक्ष्मी की पूजा करने वाले ने रब की पूजा नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकती। एक दी होगी इष्ट एक हो सकता है। जिन्हों का गुरु जिन्हों का इष्ट लक्ष्मी हो गई उनका गुरु गुरु नानक किवें होगा? यह तो पैर थले रखण की लोड़ है, इनू तो लताड़ दे तुरे जाण दी वर्ती चले जाण दी गल है। फरीद कहिंदा हाथ ना लाए, हाथ ना लाए कसुंबड़े, वह सच्चा है क्योंकि हाथ लाया महसूस किया है कि धोखा देंदी। मगर धन गुरु नानक यह नहीं कहिंदे कि इनू हाथ ही ना ला दे पैर ही ना ला, नहीं इनू वर्तदा तुरिया जा इहदे च फसी ना। जल जासी ढोला सजना एदा रंग तुर जाण वाला। एक आपीना पतली सह के रे बोला, ध्यान देना इथे आके शब्द पाठ थोड़ा जा समझ के करन दी लोड़ है। एक कुछ ऐसिया होंदिया ने जेड़िया अपने हंकार च मतिया होंदिया ने, पतली हंकारिया हुई मान विच आईया हुई अपने आपे दे हौमे दे मान विच रतिया हुई कुछ ऐसिया भी होंदिया ने। उन्हां नू हंकार दिया मारिया नू रब दी नेड़ता प्राप्त नहीं होंदी। उन्हां नू जदों आवाज पैंदी है ना ओए कह के आवाज पैंदी है, रे कह के चल रे चल ओए रे कह के आवाज मान नाल नहीं बुलाया जांदा। सह के रे बोला मालिक दे बचन रे कह के प्राप्त हुंदे, कठोर ढंग नाल बुलाया जांदा, सख्ती नाल बुलाया जांदा। दुद्धा थणी ना आवई फिर होए ना मेला, उन्हां दे जीवन विच उन्हां दी जवानी विच मिलाप दा वो रंग नहीं खिलता जो पति नूं मिलके प्राप्त होना चाहिए। कहे फरीद सहेलियो शौ अलाए सी। फरीद जी कहंदे ने सजनो सतसंगीओ प्यार वालेओ भगतो, जदों प्रभु सदा देवेगा प्रभु बुलावेगा मेरा खुदा आवाज मारेगा। हंस चल सी डुमना हंकार दा मारिया होया, माया दे रंग च फसिया होया, दुबदा विच गया जाएगा बंदा। हंस चल सी डुमना, हंस कहंदे ने जीव नूं, जीव जिसले छड़ के जाएगा ते दो मना हो गए, दुचिती च फसिया होया दुबदा च फसिया होया। ए तन ढेरी थी सी जिस वेले ए शरीर मिट्टी हो जाएगा, हंसे नू छड़ के जाएगा ते दुबदा विच जाएगा दुखी होता जाएगा। धन गुरु नानक कह लगे इब्राहिम शेख फरीद की गल अपनी था सच्ची है, पर तेनू मैं एक हल दसा इनी परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। साहब कहंदे ने जप तप का बंद बेड़ला, ध्यान दे गुरु नानक का मत की, जप तप का बंद बेड़ला वाहेगुरू जपदा रहो ते थोड़ा उद्यम कर तप कर। जेड़े लोग चाहते ने ना आम तौर पर गल कही सुनी जाती है, कहंदे ने नानक सतगुर भेटे है पूरी होवे जुगत हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विचे होवे मुक्त। हसते खेड़ते खांदे पहनदे लोग गल दूजी तो कहंदे दुख का दूजा हिस्सा कहंदे, हसंदे खेलंदे पहनंदे खावंदे विचे होवे मुक्त इन्नी गल कहंदे, पहली गल नहीं कहंदे नानक सतगुर भेटे है पूरी होवे जो। हसना खेलना खांदे पहनदे जीवन का आनंद लेना अपनी थां ते है, लेकिन जे जीवन विच तप नहीं ना यह सारा कुछ व्यो बन जाए। यह हसना खेलना खाना पीना हसना बाल जब लग हृदय ना आवे यार, वो तप की है? यह तप वो ना समझना जेड़े लोग जिन्हों तो गुरु नानक ने जाके वरजिया सी जोगियां केड़े पासे पै गए, संसार नूं छड़ के बर्फा च बैठे हो धूणियां ताई बैठे हो, गर्मियां च धूणियां ताउणियां सर्दियां च बर्फा च जाके बह जा। जो कुछ शरीर नहीं ना मनदा जो कुछ शरीर इजाजत नहीं देंदा, शरीर मंगदा रोटी रोटी नहीं खांदा, ते साहब कहंदे ने गलत कर रहे हैं। छोटे अन्न करे पाखंड, नहीं ये गलत काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ने शरीर की लोड़ है नींद, कहते सौना ही नहीं खड़े ही रहना, नींद नहीं लैनी बिल्कुल नहीं सौना, जिनी भाई शरीर नूं लोड़ है उन्नी तो लैनी पैगी, ना लेगा शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर नाल धक्का कर रहे। पानी की शरीर नूं लोड़ है तेनू इनू देना पैगा, ना देवेगा इसे नूं कहता है। तो महाराज ने पावन बाणी च कहा है मन हथ किने ना पायो सब थके कर्म कमाए, यह जिद भी मारी हुई गल है, यह जिद वाली तपस्या है, यह तपस्या प्रमाण नहीं। तप का मतलब है गुरु का सिख मत समझे कि तप नहीं मेरे जीवन में, अमृत वेले जागना तप है, हर रुते अमृत वेले इशनान करना तप है, चौंकड़ा मार के नितनेम करना अपनी थां ते तीजा तप है, गुरु संगत में आके बैठना चौथा तप है, गुरु के हुक्मां नूं सिर मत्थे धारण करना गुरु की रहत नूं धारण करना पंजवां तप है। तप तो बिना सिखी कोई नहीं तुरदी। वाहेगुरु सिमरन करदा होवे उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के साध काम।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई, मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हों ते पै मांगू, देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

खट खट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी जियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उत्थे मिल जावे। कबीर हज काबे हों जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा कीता। कहन लगे कबीर किथे चले हैं? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए मेरे नाल झगड़ा कीता भई लोगां दी तां मत मारी गई है तेरी भी।

ब्रह्मा दियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पापी बिस्न डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोले नाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह जी हजूरी विच सजके जो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जो हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उसका वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो ज्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है, सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। तो यह हुक्म कलगीधर का सुन के कहाण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह के अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। ते जे गल्लां करनी है जे बातां करनी है जे दीदार करना है ते बह जाओ हजूरी विच सज जाओ आके इशनान करके जंदिए साहब की बख्शिश है भी जो गल्लां करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाओ भी ऐ कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर ये उत्तम है ये प्रमाणिक है ये ना प्रमाणिक है तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए जंदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का करिश्मा है ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है ते राह दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुणदा नहीं ते मैं समझदा वी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्होंने दिते। नेत्र तां दिते पर साहिबां दी दसे सतगुरां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दिते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्होंने संसारक तौर ते तां इंदिरा करन बख्शिया है पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दिता। इसलिए सब सिखन को हुक्म है की आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबियां तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा करिश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानूं उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सफलियो रुखड़ा अमृत जांग का नाम जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही दिओ दे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलदा है ते जिहड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरखत दा नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरखत ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना

तिहाया क्यों लहे जा सर पीतर पार। कुछ सरोवर आपां बार धरती ते देखते हैं, पर एक अमृत का सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं, जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है, क्योंकि सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने, फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है, वो तिहाया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी, ओदे नाम रूपी अमर

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत, आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जाए, कोई थोड़ी बहुत ताकत हो गए, वो समझदा है कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं, यह जड़ी मैं है, एहो इंसान नू चैन नाल नहीं बैठन देंदे। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और यह भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती, उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक, जो मैं कह रहा वो

जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नु जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है, और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

हाँ वारी बन जा खनिए बन जा तो साहिब के नामे ऐ परमेश्वर मैं तेरे तू वारी तेरे नाम तू कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली गुरु नानक साहब जी पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे बैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नू मिल के अपनी माता माता तृप्ता नू गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखी तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी के पैरों से मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पूछते ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हाँ कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाइया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते इन्होंने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए थे नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दिया डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राम गुरु नानक साहब की याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नूं मिलो। बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नूं मिल के बेबे नानकी जी नूं मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तों थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसीं वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ये नहीं हो सकता। सतसंग ये इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है तां कि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सत संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसी गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना एक कथा कहानियां सुननियां हैं अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया ते आओ एक कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मन विच प्यार रखी साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

परमेश्वर जिस दे चरना कमलां विच दास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उसको जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साड़ा साई है, साड़ा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानता है कि आने वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ये बेनती करता है कि है मेरे साहिब, मेरा आने वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हो, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ए गुरसिख तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जाने। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास। साहिबां दा फरमान।

अमृत, अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत की कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा ढंग वखरा, अमृत लभण दा ढंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोका अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता, अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमा दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह की थी सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहा है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे नाम

सुत कंधे ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख न कहते ने अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंत प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाण वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं

अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती की। गुरु साहबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा है, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे ने, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा, सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? उस सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो, जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ये सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया, मसंदां पंडतां साधुआं सन्यासियां नू किन्नू दया ये सूरत, क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके लजाने हैं, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना ते साफ चाहिदा है।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरश बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे है। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां, एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साढ़े को ले आ। पहरेदार चला गया, दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखा बंद नहीं, हाथ जोड़े हुए ने, पर बंद अखा विचों अथरू पै गिरदे ने, ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उस सिख उठिया, अखां पूंजदा होया, पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी, उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार, कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेत

पंडितों की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते साहबा ने कहा जिहड़ा मास वाला लंगर छकेगा उन्नू बहुत ही माया मिलेगी, जिहड़ा सादा लंगर छकेगा उन्नू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ते सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

तो ज्यादा पंडाल खाली हो चुका सी। ते जड़े दूर दूर भज गए सन, भजे भी जा रहे ने, पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने, कोई फड़न ते नहीं आ रहे। पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए। जड़े बैठे सन प्यारो भी करते, पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते। बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने। हुण गुरु साहब जी उस तंबू विचों बाहर निकले, कृपान म्यान विच है, चेहरे ते हुण रौनक प्यार है। वो पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन वह ते जिउंदे ने, इक वर्गे कपड़े पाए ने, गात्रे कृपान, सोहणियां दस्तारां, हत्थां विच कड़े, तेड़ कशहरे, हाथ जुड़े ने। पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने, जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए। सामने सर्वलोह दा बाटा पे है, जिद विच पानी पाए, विशकार दो तारा खंडा रखे। तन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हाथ दे नाल खंडा हिलाण लग पए पानी दे विच, ते मुंह दे नाल बाणी पढ़न लग पए। अपनी निगाह खंडे ते टिकाईए, खंडा पानी विच ला रहे ने, मानो बाणी नू खंडे जरिए पानी विच घोल के।

इंतजार कर रहे हैं। इन्हें नु सारी संगत मथा टेकन लग पई। कौन आया? गुरु साहबां दे महल माता साहब देवा। गुरु साहबां दे कोल आके खड़े हो गए। झोली अगे कीती। झोली विच पतासे ने, ओ पतासे बाटी विच पा दिते ते मुस्कुरांदे होया आखिया, पातशाह मेरा हिस्सा। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, हां साहब देवा तुहाडा भी हिस्सा। मैं अमृत तैयार कर रहा सा मुरदियां विच नवी रूह फूकण वास्ते। जात पात ऊंच नीच खत्म करके एक नवा समाज बनाने वास्ते। पर तुसा इस अमृत विच प्यार मिठास सहनशीलता घोल दीती। हुण जदों कोई अमृत छकेगा, जे चरखनिया ते चढ़ेगा तां वी बाणी पढ़ेगा, जे किसे दी खोपरी लाई जाएगी तां वी ओह बाणी पढ़ेगा, जे किसे दा बंद बंद कटिया जाएगा तां वी ओह बाणी पढ़ेगा। अमृत तैयार हो गया। अमृत तैयार करके जिन्हें पहला सिर दिता सी दया राम ने, ओदे सामने खड़े होए। एक अमृत दा चुल्ला दया राम नूं दिता, पीण दा इशारा कीता। दया राम ने अमृत दा चुल्ला जदों पीता, एक नवी बोली दिती ते गुरु साहबां ने कहा, कहो दया राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ते हुण पंजां दे नाम भी बदली हो गए। दया हुण दया सिंह हो गया, ते तुसी हुण शेर हो। ते जिहड़ा शेर है ओह कदी डरदा नहीं। हुण तुसां जुल्म दा मुकाबला करना है, जुल्म खत्म करना है, गरीबां दी मजलूमां दी रखिया करनी। जदों पंजां ने अमृत छकिया ते हुण पंजां दे मनां दी अवस्था इह हो गई, बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाली मुख अमृत दीना। साडे बाप कलगियां वाले ने अपने हत्थां दे नाल साडे मुंह विच अमृत पाया। हुण पंजां दे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हो गए कि सिखो हुण तुसी गुरु हो, हुण मैनू अमृत दियो। इस दुनिया विच एक नवी गल सी कि गुरु चेला बन गया ते चेले गुरु बन गए। दया सिंह कहन लगे, पातशाह असां सिर दे के अमृत लिए, तुसी अमृत मंगदे हो, तुसी की भेटा दियोगे? ता गुरु साहबां ने कहा, मैं अपना पिता हिंदू धर्म दी राखी वास्ते पहला दे चुका। मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मैनू अमृत छकाओ। पंजा प्यारिया ने गुरु साहबां नू अमृत छकाया ते हुण गुरु साहबां दा नाम भी बदली हो गया, गोबिंद राय तों गोबिंद सिंह। ते दूर सारियों एक साधु उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जिहड़ा आपे ही गुरु बनिया ते आपे ही चेला बनिया। एक नवा राह दुनिया नूं दिता। ए जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा गुरु रह सकदा ते चेला हमेशा चेला। कहन लगे, नहीं, जदों खालसा साजे आ फिर इह कहा कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। साध संगत हुण इक विचार है कि गुरु साहबां ने उन्हां पंजां नूं नाम दिते, दया राम नूं दया सिंह, सिंह नाम उदों दिता जदों उन्हां अमृत छके। ते जे कोई बगैर अमृत छके सिख परिवार विच जन्म लै के अपने नाम दे नाल सिंह लफज लांदा है, ओ सिंह लफज माता पिता दा दिता हो सकदा है। गुरु वालों सिंह लफज उदों मिलेगा जदों आपां अमृत छकांगे। गुरु ने किन्नी कृपा कीती, ना समुंदर रिड़कण दी लोड़ है, ना अवतार बनन दी। ते गुरु नानक वर्गा कोई हो नहीं सकदा कि जिन्हों सचखंड अकाल पुरख बुला के अमृत पियावे। किन्नी कृपा कीती। रहत बैत वाले पांच सिंघां कोल जाओ, बेनती करो, वो अमृत तैयार करके पाई तुहानू छका देणगे।
तो जिन्हें अमृत नहीं छकिया सिख परिवार विच जन्म लैके ओदा जीवन किसे लेखे नहीं ते अमृत जिहड़ा छक लैंदा ओदी कोई जात नहीं अगर एक चमार भी अमृत छक लवे रहत विच रवे ते गुरु साहिब जी कहंदे ने ओ फिर चमार नहीं।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करता कोई रचना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसा चीजा बंदिश दे गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग ना थोड़ा जा गाया जाता है ये आम जिन्हें सजना जा भैणा ताल सुर की समझ ना हो तो कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा होता है जिदे नाल चीज का समुचारा समाया जाता है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होगी जे भैणा जा वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज़ नाल बोलन ते नहीं तो प्यार नाल सरवण करना इस शब्द के विचों बहुत कुछ मिलना है।

अवसर केत रहस रहसी बिनो करें दी बकरी बिनो करें दी बकरी पुत्र असाडे कीचन खसी अकत धूला खाद्या अकत धूला खाद्या को खल उखल विनसी खादा की अकत धूला सजा की मेरी खल पुठी करके ला के शरीर तो जुदा कर दे। मैं हसदी यूं हां भी सिर्फ महज अक ते धतूरा खाण दा सदका मेरी औलाद निकम्मी हो गई ते मेरी पुठी खल लह गई है सिर्फ अक धतूरा खाण करके। फिर सुनो अक धतूरा खाद्या खल उखल विनसी मास खान गल वड के हाल तिनाड़ा कौन होवसी। जेड़े छुड़ियां फेर फेर श्री सभा ना चटका चटका के बकरे खांदे ने कट्टे खांदे ने बच्छे खांदे ने जीव खांदे ने। बकरी कहिंदी मैं इस करके हसी हां भी महस अकत धूरा खाण दा सदका मेरी ये खल होई है ते जिन्हां दा किता ही ये है करतब ही ये है जिहड़े इस चस्के दे अंदर फसे हन मास खाण गल वड के ते हाल तिनाड़ा कौन होवसी। उन्हां दा हाल की होएगा ये रीजन है मैं हसदी हां।